सुम्भो पार्वती पदे नायन मारुवड़ी वाड़ुगे हनुमान दुर्वड़ी वाड़ुगे तिरुगुणा